दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सर लाइव ब्रॉडकास्ट में. मैं हूं विनेश, प्रोग्राम डायरेक्टर. और जी हां, आज हमारे जो प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गीत आपको सुनाने के लिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हमारे पास गेस्ट होते हैं और बातचीत में काफ़ी जो समय निकल जाता है. तो हम शुरू करेंगे गीत से, और गीत के बाद में कुछ हम आपसे कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे. कुछ समाचार है, कुछ इवेंट्स आ रहा है, उसके विषय में भी हम बात करेंगे. तो चलो पहला गीत हम आपके को सुनाते हैं. आशा करते हैं गीत आपको पसंद आएगा.

जी हाँ दोस्तों साथियों, आप सुन रहे हो जलसा फिजी रेडियो और आशा करते हैं कि ये जो गीत अभी आपने सुना पसंद आया हुआ होगा। ये मूवी हीरो की थी जो 1983 में रिलीज हुई थी। जैकी शरोफ और मीनाक्षी ने इसमें काम किया था और सुभाष गाई ने इस फिल्म को बनाया था। बहुत ही अच्छी स्टोरी, अगर आपने नहीं देखा आप दोबारा देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया मूवी है। और ये जैकी शरोफ का जो फर्स्ट मूवी था उसी से उसने जो ये काम बोली उसका जो काम शुरू किया था, आई मीन एज अ हीरो। तो आप ये मूवी देख सकते हो और ये मूवी उस वक्त में अच्छा चला था, काफ़ी जो हिट हुआ था। मैं सिर्फ ब्लॉकबस्टर इसको बतलाया गया था, एंड इट रेन फॉर 750 डेज इन सम सीरीज। तो काफ़ी जानो जैकी शरोफ के लिए ये जो पहला कदम था बहुत बढ़िया था। और इसमें जो सपोर्टिंग कास्ट थे, अगर मूवी देखोगे तो शम्मी कपूर, संजीव कपूर ने बहुत ही बढ़िया जो काम किया था। और अमरीश पुरी जो विलन बनते हैं वो तो अमरीश पुरी है ही, उसके तो सभी जो कोई भी किरदार में आता है बहुत अच्छा जो काम करता है। साथ साथ में शम्मी कपूर भी थे। और ये जो गीत थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे, बहुत अच्छा था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो एक जो म्यूज़िक जिन्होंने जो साउंड ट्रैक दिया था। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक और नेक्स्ट जो गीत सुनाते हैं और गीत के बाद में फिर हम कुछ चर्चा करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, साथ ही बहुत स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के से प्रोग्राम में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। आशा है कि ये जो गीत है आपको पसंद आया हुआ होगा। ये जो गीत है इसमें माधुरी दीक्षित को फिल्माया गया था और बप्पी लहरी की जो संगीत थी और अनुपमा देशपांडे ने अपना जो आवाज़ दी थी। और आगे चलते हैं और हम अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनको याद कर लेते हैं जिसके वजह से ये प्रोग्राम हम आप तक पहुँचा सकते हैं। जनरेशन होम्स, विवेक श्रीवास्तव है, संदीप है, सेरा लेंगली, आपको हम याद करना चाहेंगे। और लाइफ स्टाइल सॉल्यूशंस के हमारे जो दोस्त है रिचर्ड सेवक, आपको हम याद करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ साथ में वरुण फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस एडवाइजर्स, रोहित सज्जदेवा बेटा चॉइस होम लोन्स, और एनजेड फ्लेम्स के हमारे जो दोस्त हैं नीर जी, और गो वाइज ड्राइविंग स्कूल जी हाँ टी नंदन को हम शुक्रिया करना चाहेंगे, अंशुल गुप्ता क्लाइंट रियल स्टेट, मोनिल जी फ्रॉम मजेस्टिक स्टेज एंड ऑन द गो ईस्ट गेट के डेनी जी, हम सभी को शामिल करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में और धन्यवाद भी देना चाहेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो गीत आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ और समाचार भी हम देंगे। तो देखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम अभी जो आ रहा है यहाँ पे क्राइस्टचर्च में स्पेशली, तो अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। एक प्रोग्राम है बांसुरी, जो एक थिएटर ड्रामा जो थिएटर रहेगा, ये रहेगा 12th of September को। तो अगर आप हमारे जो सोशल मीडिया फेसबुक या टिकटॉक भी देखोगे तो उन पे आपको ये जो पोस्टर दिखेगा बांसुरी आई टेल ऑफ लव, तो इसके विषय में भी हम आगे चल के और भी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि इसका जो प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रहा है, तो अगर आपको टिकट चाहिए देन यू कैन स्टार्ट प्लेसिंग योर बुकिंग्स। तो चलो हम आगे चलते हैं और ये गीत आपके लिए सुनाते हैं और गीत के बाद में फिर हम और आपसे बातचीत करेंगे।

0: टू एंजॉय एवरी।
1: जी हाँ, आशा है कि गीत आपको पसंद आया हुआ होगा। ये जो यार बिना चले काफ़ी जो पॉपुलर गाना था 1985 के, अगर आपको याद होगा जो मूवी आई थी साहेब, इसका जो आइकॉनिक डिस्को गाना है और जिसमें बप्पी लहरी और एस जानकी ने ये गाना गाया था और अनजान ने ये गीत को लिखा था। ये जो काफ़ी अभी भी आई थिंक क्वाइट पॉपुलर उस जमाने की, तो काफ़ी जो पॉपुलर लोकप्रिय जो गीत थी और काफ़ी लोग गुनगुनाते थे, गाते थे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कोई प्रोग्राम है जिसके विषय में हम आपको बतला सकते हैं। जहाँ एक ड्रमिंग फेस्टिवल आ रहा है 30th of May, अगर आप जाना चाहो तो ये रहेगा दी औरोरा सेंटर बेनसाइड में रहेगा। वर्ल्ड ड्रमिंग फेस्टिवल 5 PM से शुरू होता है, तो इसका जो भी पोस्टर आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया पेज पे, यानी कि हमारे जो दो पेज है, जलसा फिजी रेडियो पेज या जलसा टैलेंट कंपटीशन पेज, दोनों पे आप देख सकोगे और साथ साथ में टिकटॉक पे भी हम डाल देंगे। तो अगर आपका कॉन्टैक्ट्स वगैरह चाहिए यू कैन, अदरवाइज हमें मैसेज भी करोगे तो हम बता देंगे या कॉन्टैक्ट्स दे देंगे कहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हो। जी हाँ, चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक गीत और हम आपको सुनाएंगे और ये जो गीत है, एक्चुअली ये गीत मैंने बस अभी 2 या 3 दिन पहले टिकटॉक पे सुना था। इससे पहले मैंने गीत को कभी नहीं सुना, विच इज़ वेरी वियर्ड। मैंने गाना नहीं सुना था और सिर्फ 2-3 दिन पहले ही सुना, एंड आई वाज शॉक। मैंने बोला ये गीत कैसे मिस हो गया और कैसे मैंने सुना नहीं, और मैंने काफ़ी बार सुना। उसके बाद में फिर टिकटॉक पे यही गीत बार बार नो सुना, तो इसका मतलब ये गीत अभी काफ़ी ट्रेंडी हो चुका है। चलो आप सुनिए और आप बताइए, आप सोचिए कि आपका इसमें राय क्या है।

जी हाँ दोस्तों साथियों, जो गीत अभी आप सुन रहे थे फिरकी वाले कल फिर आना, ये गीत दो ही दिन पहले हमने सुने थे, तो हमने सोचा चलो आपके साथ में हम शेयर करें। ये जो काफ़ी अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो गीत अभी आप हमने आपको सुने तो एक्चुअली रिमिक्स वर्जन है, लेकिन इसका जो एक्चुअल ओरिजिनल वर्जन में गीत गायक थे मोहम्मद रफ़ी जी, अगर आपको मौका लगे तो ज़रूर आप ढूंढ सकते हो। लेकिन ये काफ़ी जो ट्रेंडी है टिकटॉक में, इसका काफ़ी वर्जन आपको मिलेगा। और इस एक्चुअली मूवी है, मैं नाम लेता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाओगे इस जो कास्ट को या तो फिर इस कैरेक्टर्स को, जो पहले ज़माने में जो मूवीज़ में ना काफ़ी मूवीज़ में आपको देखने को मिलता था, जैसे संजीव कुमार, हम सभी जानते हैं संजीव कुमार को, और नजीमा जी, मोहन चोटी, अजीत, जो अजीत ने आई थिंक काफ़ी मूवीज़ में काम किया है, मुकरी तो बहुत मूवीज़ में थे, निरूपा रॉय जो ज़्यादा करके जो मादा

रोल में आती थी महेश कुमार कमल कपूर मेरे ख्याल से कमल कपूर मोस्ट लाइकली काफ़ी मूवीज़ में आए हुए हैं जो महेश कोठारे है कुमकुम भी काफ़ी मूवीज़ में आती है कॉमेडियन आई थिंक ज़्यादा काम जितना मैंने देखा है ज़्यादा कॉमेडियन थी और अरुणा ईरानी वो भी तो बहुत हम कहेंगे बढ़िया एक्ट्रेस है और आपको याद होगा मूवी मुंबई टू गोवा जिसमें वो एक्चुअली मेन कास्ट यानी हीरोइन बनी थी विपुन गुप्ता बद्री प्रसाद श्याम कुमार यूसुफ खान मारुटी प्रेम कुमार पांडे हीरा लाल सुरेश और जैसे मैंने बोला है और भी सिंगर्स थे जैसे लता मंगेशकर मन्ना डे आशा भोसले और उषा महेशकर मंगेशकर सॉरी इन्होंने अपना जो इसमें योगदान दिया था और साथ साथ में लिरिस्ट थे आनंद बख्शी म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत कुडलकर और प्यारे लाल फिल्म डायरेक्टर के पी आत्मा फिल्म प्रोड्यूसर टी एल वी प्रसाद जहाँ आपको मौका लगे तो ज़रूर आप ये गीत ढूंढ सकते हो या तो फिर मूवी भी देख सकते हो मूवी का जो नाम है राजा और रंग अगर आपको मौका लगे तो चलो हम नेक्स्ट गीत आपको सुनाते हैं और फिर हम इस गीत के बारे में चर्चा करेंगे

जी हाँ, ये जो आप गीत सुन रहे थे ये मूवी का नाम था कर्ज। अगर आपने देखा होगा तो ये 1980 का जो मूवी था और काफ़ी बढ़िया था। और उस वक्त ऋषि कपूर आई थिंक चल रहा था, और ऋषि कपूर का जो मूवी था जिसमें उसने टीना मुनीम के साथ में काम किया था। और ये गीत जो गाने वाले थे वो थे किशोर कुमार, और जब किशोर कुमार गीत गाते हैं तो क्या बात है। और साथ साथ में म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लिरिस्ट लिखने वाले थे आनंद बख्शी जी। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट गीत आपको सुनाते, और सुनाने से पहले याद कर लेते हैं अपने जो स्पॉन्सर्स जिसके ज़रिए से ये जो प्रोग्राम हम आप तक पहुँचाते हैं। जनरेशन होम्स लाइफ स्टाइल सोल्यूशन, नेक्स्ट स्टेप अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस एडवाइजर्स रोहित सजदेवा, बेटा चॉइस होम लोन्स, एनजेट फ्लाइम्स बाबा, गो वाइज ड्राइविंग स्कूल, अंशुल गुप्ता क्लाइन रियल स्टेट, मजेस्टिक स्टेज मोहिल जी, और ऑन द गो ईस्ट गेट के डेनी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तो चलो हम नेक्स्ट गीत आपको सुनाते हैं और उसके बाद में फिर हम और चर्चा करेंगे अगर हम वक्त देखते हैं तो। बहुत नहीं वक्त हमारे पास बचा, शायद 10 मिनट और रहेगा हमारे पास, हम देखेंगे कितने गीत और हम आप तक पहुंचा सकें।

जी हाँ, क्या दिल ने कहा, क्या हमने सुना ये मूवी, शायद आपको याद होगा, जिसमें तुषार कपूर जितेंद्रा का जो बेटा है उसको उसने काम किया था ईशा देओल के साथ में, और जिसे आपको मालूम है ईशा देओल धर्मेंद्र जी की बेटी है, और उदित नारायण और अलका याग्निक की जो आवाज़ थी, और मूवी का नाम ही था क्या दिल ने कहा, ये इसका टाइटल ट्रैक था, और जो कंपोजर थे हिमेश रेशमैया था, और लिरिक्स थे संजय शैल, म्यूजिक लेवल सोनी म्यूजिक जो था। और चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये गीत हुआ, अब हमारा जो नेक्स्ट गीत है यही हमारा जो आखिरी गीत होगा, तो हम इस गीत को आपके लिए छोड़े जाते हैं इस वादे के लिए कि हम फिर जुड़ जाएंगे नेक्स्ट सैटरडे इसी समय 5 PM तक, और तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, और आशा है कि आपका जो कमिंग वीक अच्छी तरह बीते।